0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु अरदास पे अमरदास गुरु अमरदास गुरु अरदास पे रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु सच्चे साहिब एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रीतम भगवती सिमर के गुरु नानक लेती आए फिर अंग गुरु थे अमरदास रामदास से होए सहाय अर्जुन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हराय श्री हर कृष्ण दियाया जिसे दिथे सब दुख जाए ठेक बहादुर सिमरिया गर नौ निड आवे दाए सब ताई होए सहाय दास में पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब ताई होए सहाय दास पातशाही अंधे जो धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाती रात दी अंदर के कास जी बोलो जी सतनाम पंजा प्यारिया छह सब जरिया छालिया मुक्तिया हतिया जपिया तपिया जिन नाम नाम जपिया वंद चकिया देख चिल्लाही देख फाही देखे अंदर कीता थिना प्यारिया सचियारी कमाई दाते अंदर के कास जी बोलो जी सतनाम चिन्ना सिंगा सिंगिया ने धर्म हे सिस्तिते बंद बंद कताई खोपरे लहाया छरक्या थे छरे आर्या नाल छराही गे गुरुआरिया दी सेवा ले कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हरिया सिखी खेसा स्वासा ना निभाए थे नदी कमाए दादी अंदर के खास जी बोलो जी सतनाम सारिया थकत सरबत गुरुवारिया दादी अंदर के गास जी बोलो जी सतनाम प्रत में सरबत खास जी की अरदास है जी सरबत खास जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सर का सर्व सुख होवे जहां जहां खास जी साहेब तहां तहां रचारियत देख ठेक फतेह बिट की फेज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल भले बोलो जी सतनाम सिखानू सिखी दान खेसदान रहत दान बिबेक दान विसादान भरोसा दान धनासिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौंकिया जुंदे बुंगे जुग जुग तल धर्म का जयकार खास जी बोलो जी सतनाम सिक्का दामा निवामा तुची मात पात दार राका आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंतरे सदा सहाय दाता जियो श्री नंकान साधे होर गुरुवार गुरु धम्मा दे जिन्ना तू पंत नु छोड़िया गया है खुले दर्शन दिदारे सेव संभाल दारां खास जी ने बख्शो हे निमाने रिमान ताने रिधान होते अन्योत सच्चे पिता आप वाहे गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु इन योर परफेक्ट ग्रेस योर परफेक्ट लव योर परफेक्ट ट्रूथ वी स्टैंड दिस मॉर्निंग इन डीप डीप ग्रैटिट्यूड एंड रेवरेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ यू एंड दीज गिफ्ट्स दैट यू एवर शावर अपॉन अस वी थैंक यू फॉर दिस मोमेंट इन टाइम वेयर वी कुड स्टैंड बाय बिफोर यू टुगेदर एज योर साध संगत ऑफरिंग द प्रेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द साध संगत वी थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट ऑफ लाइफ एंड ब्रेथ For these beloved teachings that carry us closer and closer to you with every moment, every breath we take. We thank you for the great, great blessing of the Siddhi Singh Sabhai Sabharbhajan Singh Khalsa Yogi Ji, thy most humble servant. We thank you for this way of life that he shared with us, that he taught us, that he inspired us to live, and that he led us to your lotus feet where we could experience eternity in this moment, every moment. Waheguru, thank you for this great, great blessing. We pray on behalf of the Sadh Sangha this morning, all those standing before you this day, all those listening far and wide, our beloved Sanghats all over the world. We join together in prayer and thanksgiving and offer the prayers of the Sadh Sangha. All of us, may we live in peace and charity kala and good health and happiness and holiness. Special prayers on behalf of those that are seeking extra guidance and healing in their lives, all these names that are on this Ardas sheet, all those that we carry in our heart, all those dear ones that you know, may they all be healed and uplifted and restored to their perfect health by your great kindness and by your grace. Waheguru. Waheguru, we pray for all our enterprises. We pray for all that we've been blessed to create in your name. We pray that it continues and succeeds and thrives through all these times and all the tests of time and space. Waheguru, we ask for your blessing this morning on this prasad. May its sweetness ever be instilled in us by the grace of your holy name. Bless the steel that passes through it, and may it always pass through us as well. And we thank you for this hokamnama that we are about to receive. May its vibration ever uplift us and carry us closer and closer to you by thy grace. Waheguru. Akaravadagata bochukumafkarani sarabade karajas karani ji se pyare milijin amilya teranam titiave nanitanam charikala teri bani sarabadavala. Waheguru ji ka khalsa.
1: Waheguru ji.

सेवक से कैसे बै कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब भेरण का आज सुन करिए पूर्ण होए हमारी आशा थोड़ बन की रहे प्यासा तुम्हें चाल खोए अवर न जाओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिके हमारे तारिये चुन चुन सतुर हमारे मारिये आपा ते मुझे उबरिये मरण काल का त्रास निवरिये ऊँचो सदा हमारे पच्चा श्री अस्तु जो करियो रचा राख ले मोय राख नहारे साहेब संत साहेब प्यारे तीन पंद दुष्टन के हंता तुम पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्म बपतरा काल पाए शिव चु अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का आत्मासा जवन का जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्म ज्योतियो जवन का सब लोक सवारा नमस्कार है ता हमारा जवन का सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोए गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसे कुमारी सकल प्रजाजन आप सवारी शिव कर का सब गुण सुख दियो सतरन को फल मोहबद कियो घट घट के अंतर की जानता भले भले की पीर पछाण जीती ते कुंचर अस तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए सन के सुखी एक एक की पीर पछाण गत गत के पट पट की जाने जब उदखर करा करता रा प्रजा दर तब दे अपारा जब आकर करता हूँ कब हूँ तुम्हें मिलते दर सब हूँ जेते बदन सुर सब तारे आप अपनी बोझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निलंब आद अनियल अनाद असंभ ताका मूर उचारत भेदा चाको बेब न पावत भेदा ताको कर पहन मानत महामूर्ख च भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्ह भव आप अपने बोध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुए तेती तुम्हारा लखा

ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सहजी मन बचा बताया राग रत्न परवार परिया शब्द का

सच्चे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है, जिस तरह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वस्या वाचे शब्द नहीं, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, सच्चा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जिन भुका सब गवाया, कर संत सुख मन आय वसिया, जिन इच्छा सब पुजाया, सदा कुर्ब

तिस्काहो उदारो एवस तजी ने जय नित नित रख उड़तारो तम संसार चल नग थर्य सब नानक परम पसारो। श्लोक बेहरा पांचवा।